Beautiful song, wonderful song, Shrutawani, suna ai de film Zindagi. Ravi Sahab ji ke beautiful awaaz mein. अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एड फिल्म जिंदगी हम प्यार का सौदा करते हैं.

सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक झलक चाहिए तुम्हारा पीछा करने के लिए। मुझे आदत नहीं कहीं इतनी देर रुकने पर, मुझे आदत नहीं इतनी देर कहीं रुकने पर, तेरे दर्शन होते हो मेरे पांव मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, तेरे दर्शन होते ही मेरे पांव मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। ये भी होती है। तो ये था कुछ शेर्स। आगे के प्रोग्राम में कुछ कोशिश करूंगा और सुनने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम द मूवी जिंदगी। इस बार एक डुएट तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि कुछ अल्फाजे सिर्फ आप रफी साहब जी के मधुर आवाज में सुनेंगे और बाकी गाने तो लता जी सुनेंगी आप सभी को कोरस के साथ शंकर जय के साज पर। मिलके सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, हम दिल का कमल देंगे। क्या बात है।

हम दिल की कमल देंगे, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी, लता जी और साथियों के साथ। कवर अति सुंदर बयान, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में आप सुनेंगे। और एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी मिलकर सुनाते हैं घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जयकिशन और लिखा है हसरत जयपुरी।

beautiful song, wonderful song, Gungarwa Mora Cham Cham Baje. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. प्यार की दुल्हन सदा सुहागन. एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए. मिल के सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन.

पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर। छूने ना दूंगी मैं, दोनों बहने क्या बात है, लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं शंकर जय किशन की सांच पर। जिंदगी The movies.

0: Ready? शादी मुबारक, तुम हमेशा खुश रहो।
1: गोपाल, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए।
0: मदद? मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें और उसकी वजह मत पूछिए।
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना।

ब्यूटीफुल सॉन्ग छूने न दूंगी मैं। आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये अति सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की। एड फिल्म जिंदगी शंकर जयकिशन की सांच पर एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। एड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नए मेहमान विद कोर्स के साथ।

0: beautiful song ek naye mehman aaye hain ed film zindagi lata mangeshkar with chorus ke sath maestro mahan sangeetkar jori the great shankar jay kishan ke saanch par to hamare priye priye shrotaon sabhi nagme aap sun chuke hain film zindagi ka ab aap sunenge kuch vigyapan aur कमर्शियल्स ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो कहीं जाना मत जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना क्योंकि आप जब सुनते हैं तो हम लोग भी और जोर तोर से कोशिश करते हैं कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट कर करके आप सभी को सुनाने के लिए तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ स्टे ट्यून ऑन आप ही का तो ये आवाज़ है जनता का आवाज़ है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है आफ्टर द ब्रेक
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं एक बार फिर से स्वागतम। वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतिलक बदंत सो सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स। भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सभी जानकारी 970-362-2747 दफ्तर कतार का नंबर स्टूडियो कतार का नंबर 970-362-2077 पर आप तार करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इश्तिहारे खास फरमाइशे या जरूरी खबरें के बारे में तो जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रेक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने औरों को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने प्रोग्राम की तरफ लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को। हम पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक और उसी फिल्म में से नगमे चल रहे हैं। अगला बयान बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने जा रहे हैं आप सभी को। लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी साथ दे रही है। कुछ आवाजें सुनेंगे विजयंती माला जी के, मिलकर सुनते हैं।

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं,
1: नहीं कभी नहीं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, फ्रॉम द मूवी संगम, टाइटल सॉन्ग uit 1964. लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोज बाय शंकर जय किशन, और अल्फाज़ थे हजरत जयपुरी जी का. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग फ्रॉम द मूवी संगम. सभी गाने इस फिल्म का सुपरहिट साबित हुए. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर एक बार फिर सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी, साथ दे रही है लता मंगेशकर जी.

इश्क़ जी शंकर जय किशन के सांझ पर। अगला बयान सुनाने से पहले कुछ आखिरी शेर्स हो जाए यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में फॉर द शेर्स लॉफर्स। अर्ज क्या है यारो कि ये जो जनाब है ये तो खुदा से भी लड़ना चाहता है यारो। अर्ज किया है कि कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कि मैंने गुनाह ज्यादा किया या तूने जख्म ज्यादा दिए। नींद तो क्या आएगी यारो, नींद तो क्या आएगी यारो, मौत आई तो सो लेंगे, कुछ ना किसी से बोलेंगे क्यों भाई। होश हालात पर काबू तो कर लिया मैंने, होश हालात पे काबू तो कर लिया मैंने, उन्हें देखे फिर होश खो गए तो क्या होगा यारो। दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, कि जब तुमसे जुदा हो, कि जब तुमसे जुदा हो तो तेरी जान ही निकल जाए। आखिरी शेर, जो लोग आपस में हम हम करके बात करते हैं ना, जो लोग आपस में हम हम करके बात करते हैं, वो एक दूसरे के हम दर्द होते हैं यारो। ये था कुछ आखिरी शेर्स। अगला बयान ओ महबूबा, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी संगम निगरी फिल्म्स। एक बार फिर लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला The Heartthrob of Millions, The Mighty Mukesh, O Mehbooba, Shankar Jai Kishan ke master piece of composing, Mukesh ji ke beautiful awaaz mein, I love this song.

Churan wala the heartthrob of millions, the mighty Mukesh, you can beautiful amongst me. Yet is under me an absolute down in Shunad, the film Sangam 1964. अब जरा दिल थाम के बैठिए हमारे प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर वही महान गायक द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश, जो लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला था और जिसे हम लोग रोजाना भी याद करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा गायक वो था जो अभी कितने लोगों के दिलों में बसा है, वही महान गायक द माइटी मुकेश का ये जबरदस्त सॉन्ग जरा दिल थाम के बैठिए कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिशन बाय महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन, मिलके सुनते हैं। रोने को दिल चाहता है, बार बार जब ये नगमा मैं सुनता हूं तो दिल फट जाता है।

अरे ना रहा। अति सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया आइड फिल्म संगम 1964। लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। और साथ ही साथ आज का इस हसीन प्रोग्राम का ये आखिरी

यशोमी लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम कार्यक्रम आप श्रोताओं को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं आवाज के जरिए, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना जहां पर भी हो, जिस हाल में हो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तो हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन हो मैट हेलफील्ड लेस्टर प्लेजीर के साथ। तो मुझे आपसे भी इजाजत दे और जाते जाते हमेशा की तरह तो आदत से जो मजबूर हूं ना कुछ न कुछ सुना देता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं आज आप सभी को कुछ संगीत के साथ सुनाने को।

ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से द टाइटल अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज में। अचम के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5।

अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं। किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छांव में। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर डा की आवाज में भी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

मेरे चल गए, अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है, है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत से, किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। इसी फिल्म से हमने पेश की है, लता और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी, बेटे से

अभी आप सुनते यानी सुने हैं जाने मन तुम कमाल करते हो, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।

मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह भी आप सुन रहे थे। किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कर्श। आप सुनेंगे मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस का।

अभी आप सुन रहे थे गपुची गपुची गम गम फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हमने पेश किए हैं। छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे।

अभी आप सुन रहे थे छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे। एक रोज में तड़प कर बेमिसाल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं

From the movie बेमिसाल से आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में एक रोज में तड़प कर। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, निकाह है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

निकाह है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर जी के साथ में सलमा आगा जी आपको सुनाने वाले थे। तुम्हारा प्यार चाहिए

सारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।

मुकेश और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। फ्रॉम द मूवी तुम्हारी कसम से हमने पेश किए हैं। अदालत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वो तुमसे दूर रह के

आप पे सुन रहे थे हो तुमसे दूर रह के फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं सुन साइबा सुन।

दोस्तों, आग, पानी और विश्वास जंगल में साथ चल रहे थे। आग ने कहा, अगर तुम मुझे खो देंगे तो धुएं की तलाश करना, क्योंकि जहां धुआं है वहां आग है। पानी ने कहा, अगर तुम मुझे भी खो देंगे तो नमी, नमी माने फोख्त की तलाश करना, क्योंकि जहां नमी यानि फोख्त है वहां पानी है। मित्रों, तब विश्वास ने कहा कि अगर मैं खो जाऊं तो तलाश मत करना, तलाश मत करना, क्योंकि एक बार मुझे खो दोगे तो फिर मुझे कभी नहीं पाओगे। तो मित्रों, इसका निचोड़ है कि विश्वास कभी के ना तोड़ना, धोखा नहीं देना, नहीं देना बहुत बुरी बात है।

हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते और परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकते।

भाई बहनों, दूसरों की भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक खुशी की बात है। ये आपके स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जिससे आप सकारात्मक शक्ति के बिना अनुभव करते हैं मित्रों, और दूसरों के लिए कई अच्छे काम करते रहना चाहते हैं।

0: भाई बहनों, हो सकता है कि आप कई चीजों में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके अपने छोटे छोटे तरीकों से खास बने बिना कई चीजों परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले ये सोचे कि आप क्या करना और कहना चाहते हैं, जो आपको चरित्र और भविष्य को निर्धारित करता है। मित्रों, कृपया अपने और दूसरों के हित में इसे ध्यान में रखें।
1: धनी लोग दूसरे को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग दूसरों को भी संत ही बनाते हैं।

कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा

समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाहन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज इस सुबह की कार्यक्रम में यहाँ पर आपकी सेविका उपस्थित है, अस्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। नमस्कार हो जी। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। यहाँ से हम शुरुआत करने को जा रहे हैं आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर।

तो आरंभ कर रही हूँ रोटरडैम होगफ्लीट एक्सेसवेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से सभापति मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की तरफ से आप सभी को शुभ दिन शुभ प्रभात कहते हुए सुंदर हनुमान चालीसा से हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं।

सुंदर हनुमान चालीसा से यहाँ से आरंभ किया गया है सुनने वालों, और वो भी रोटरडम होपफुली टेक्सास नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रैट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से सभापति मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से आप सभी को एक शुभ प्रभात ये सुंदर हनुमान चालीसा के साथ। और चलते हैं आपको लेकर सुनने वालों दनाखे इकनेतो स्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है श्रद्धा भक्ति के साथ।

0: है बाबूजी।
1: जैसे ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर।

शिवम सुंदरम, लता जी की आवाज में हमने सुने। देन आखिरी कृत स्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो चांद जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है, श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर हम सब ने मिलकर श्रवण की है आज इस सुबह की भजन कार्यक्रम में। देना मकाई स्रात नंबर 6 से, देना मकाई स्रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन, फाहोन हिंदू बास स्कूल फरीन अलखमीन हिंदू ऑन द वेज के तरफ से।

पूजा, चला जा राम, कहाँ छुपे हो आ जा राम। दनाख मका इसरत नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहून फाहून फाहून हिंदू बास स्कूल फरीनिंग अलखमेन हिंदू ऑनडरवेस नीदरलैंड। जानकारी के लिए 07-384-1924 पर आप पर तार करके और जानकारी आगे के प्राप्त कर सकते हो। देन हाग गमेंटे राजस्लेट देन हाग से श्रीमती लेना बाबू राम जी जो कैंडिडेट है गमेंटे राजस्लेट के, आपके लिए यहाँ पे पेश करते हैं।

जिस दिन से इस दुनिया से नफरत जब मिट जाएगा। आप सुन रहे हैं सुनने वाला स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम, जो यहाँ से आपके लिए पेश किया जाता है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और पेश किया गया दनहाग से श्रीमती लैन बाबूराम जी की तरफ से, जो हमें दराज लेते हैं। और चलते हैं दनहाग से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से।

दिया ना पिए कभी अपना जल। वर्षना से हमने यहाँ से और श्रवण किए सुने वालों, और पेश किया गया है देनहाग से श्रीमती लिली मोती राम जी की तरफ से। बढ़ चलते हैं श्री नाम अली फॉर वुमेन कंडाम हो की इंदिरा गांधी वैक से, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर इस ठंडी ठंडी भजन माला कार्यक्रम में। शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस आप सभी।

आज जहाँ याद करो बस भगवान वही है। आपकी सेवा में पेश किया जाता है सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते, श्री नावली फोनोमैन कंडामुख इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर। इस खूबसूरत दिवस में आप सभी को एक शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कह रहा है। बढ़ चलते आपको लेकर सुनने वालों, कनाडा टोरंटो और अम्स्टरडम से नेबल पैलेस। नेबल पैलेस फॉर ऑल यू हिपोटेक एंड फिनांशियरिंग आन एंड फेयर कूप फॉर वोनिंग एंड पंडन। जानकारी के लिए आप श्रीमान प्रदीप सुचित्राम से जरूर से तालुकात कीजिएगा। तार का नंबर दिया गया है 9652133 4 सुप्रभात कहते हुए।

मनुष्य का साथी है भगवान, तो बिगाड़ेगा कौन किसका। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। आपका दिन खुशियाँ से भरा रहे। पेश किया गया सुनने वालों ये सुंदर सा भजन कनाडा टोरंटो और आम्स्टरडम से नेबल पैलेस फॉर आल यू हिपोटेकन एंड फिर एंड शेयरिंग अन एंड फेयर कोप फॉर वोनिंग एंड पंदन। जानकारी के लिए आप श्रीमान प्रदीप सुचित्राम से जरूर से ताल्लुकात कीजिएगा। तार का नंबर जैसे हमने बताया एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9 6 5 3 3 6 4 7। लेकर चलते हैं दन अखला इसम फेम फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा ख्रूत हांडल बेफी के तरफ से सुनेंगे हम दाने दाने पे लिखा है।

दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ और देने वाला वही एक ही राम है। पेश किया गया सुनने वालों आपके लिए तन्हा अखलास कैंपेन फोर पारक से, तन्हा अखलास कैंपेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा खुरूत हांदल पे। फिर जानकारी के लिए आप श्रीमान आनंद अर्जुन शर्मा से जरूर ताल्लुकात कीजिएगा। 9755-73-28-67 पर। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है, जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है, मस्त रहो और स्वस्थ रहे। आप सभी को एक शुभ प्रभात। दना अखलास कैंपेन फोर पारक से सुंदर खुरूत हांदल, सुंदर खुरूत।

इंसान ही इंसान की दवा है, इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो। जीना है जिंदगी तो आगे देखो। पेश किया गया है फेन फोर पार्क से सुंदर खरूथ हंदर ए खरूंत ए फ्रेड। जानकारी के लिए आप श्रीमान परशुराम मोहल्ला से तालुकात कीजिए 0623297858 पर। देन हाँ लाइस कम्फेन फोर पार्क से बाव एंड ऑन द रोज बदरे।

को भी दे दे सहारा। खुद से हमेशा प्यार करो, खुद से अपने आप से हमेशा प्यार करो, चाहे कोई तुमसे प्यार करे या ना करे। पेश किया गया सुनने वालों तन्हा खलास कंपनी फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव से, बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव जो श्रीमान हरिदत्त रोहित देवनारायण के निर्देशन है, उनके तरफ से ये सुंदर सा भजन सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया है। फागुन हिंदुस्तानी रेडियो से आप जुड़े सुनने वालों, सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। आपको हम लेकर चलते हैं सुनने वालों फाहोन रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर और सभी सुनने वालों के

तुझे प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे अवश्य अवश्य। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप बहुत सारे प्यार पेश कर रही हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और यही आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जरूर से खुश होंगे। कहते भी कि करो शुरुआत मधुर वाणी के साथ।

पिताजी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए है। मेरे पिता के थाली में से पहला निवाला किससे खाना चाहिए? पिता के थाली से पहला निवाला किससे खाना चाहिए? तो आपको बता दें कि पिता के थाली में से पहला निवाला अगर बेटी खाती है, जी हाँ बेटियाँ, आपके घर में बेटियाँ है और पिता जो भोजन करने बैठे, तो पिता के थाली में से अगर बेटियाँ खाती है तो पिता के ये तीन चीजें बढ़ती है। माना जाता है कि जब पिता भोजन करते हैं तो बेटी को सर्वप्रथम पहला निवाला उसके थाली में से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पिता के आयु बढ़ती है। ऐसा करने से यानी कि पिता के थाली से अगर बेटी पहला निवाला खाता है तो पिता के आयु बढ़ती है और पिता के रोजी रोजगार जो है उसमें भी वृद्धि होती है। और ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए कि पिता के थाली में से पहला निवाला आप अपना बिटिया अपना कन्या को खवाएं।

0: फिल्म सागीत से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी पिक्चराइज किया गया है, रिलीज किया गया है नेहन तीन सेफनन सेस्तख में। आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो,
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी।

सुंदर कितनी सुंदर से सुना दे लता जी की, कितना आसान है कहना भूल जाओ, पर इतना आसान तो नहीं है ना। आप मेरे साथ सहमत है ये मुझे पता है। आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आप शायद अपने जिंदगी में भी ये सब महसूस करते हो और मेरे ख्याल से भी मैं माँ किए होगे, वो ये है कि देखो कुछ लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में, कुछ लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना ही चाहते हैं, पर जब उनका मन करता है तब, जब उनका मन करता है बस तब तक लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। जब तक उनका मन करता है बस तब तक, कभी कभी कभी जताएंगे कि तुम अपने हो, हाँ कभी कभी वो लोग तुम्हें जताएंगे कि तुम अपने हो, और कभी ऐसा बर्ताव करेंगे कि जैसे आप उनके, उनको तुमसे मतलब कुछ ही नहीं। एक दिन ऐसा बात करेंगे जैसे उनके लिए तुम ही सब कुछ हो, हाँ कभी कभी ऐसा बात करेंगे कि तुम उनके लिए सभी कुछ हो, और अगले पल, हाँ अगले पल तुम्हें कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो इसकी सलाह ये है मेरे प्यारे सुनने वालों कि जो ऐसा, तो जो ऐसे लोग, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके, हाँ जी हाँ जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, हाँ जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, क्योंकि जितना तुम इसमें फंसते जाओगे ना बाद में उतना ही मुश्किल होगा बाहर निकलने में। आप समझदारी से काम लेना और फरकना परखना अपने इर्द गिर्द में कि आपके साथ ऐसे तो नहीं होता है। आप जितनी जल्दी इनमें से निकलोगे आपके लिए उतनी ही फायदा होगा। Anders wordt u gewoon keer op keer gemanipuleerd en dat verdienen wij niet.

फिल्म लापरवाह से, फिल्म लापरवाह से मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जिहाने खते एन ताख्तख में ये पिक्चराइज किया गया है। किशोर दा जी की आवाज में साथ दे रहे थे चंद्रानी मुखर्जी। साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि कलयुग के साथ करवे सच, कलयुग के साथ करवे सच वो ये है। पहला ये है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। कई परिवार में ऐसे भी होता है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। आप जिसे खास, जिसे आप खास समझोगे वही दुख देगा। आप जिसे अपना समझोगे वही आपको रुलाएगा, वही आपको दुख देगा। स्त्रियां भी विवाह करने से इनकार कर देगी, स्त्रियों भी विवाह करने से भी इनकार कर देगी। और ये भी एक कड़वा सच है, अब वो ये है मेरे प्यारे सुनने वालों की प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। ढोंगी व्यक्ति जो है उनकी समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा। ईमानदार आदमी पेट भी ना भर पाएगा। और बच्चों और माँ बाप में नहीं बनेगी।

जीवन मिलना भाग्य की बात है, ये जीवन जो हमको मिला है ये भाग्य की बात है, मृत्यु होना ये समय की बात है। मृत्यु जो एक सत्य है, वो मृत्यु होना वो समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों

तो जाने वाला है और ये पल भी बीत गया है। जो शब्द हमने कहे वो भी चला गया, सेकंड चला गया, मिनट चला गया। ये गीत जो आपने सुने ये भी आपने सुन ली है। अगर आप ये सुनना चाहते हो तो हमको दोबारा चलाना पड़ेगा। पल चला गया, पल चला गया, आने वाला पल जाने वाला है।

माता जी की आवाज में यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण की है कि मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी एक छोटा सा बच्ची हूँ अपने ही माँ बाप की, अपने ही प्रभु की, जो उनके दी हुई ये जिंदगी है, उनकी दी हुई जिंदगी जो वही संभालेगी, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है, संभालने वाला भी वही है। अगर हम इसे समझ जाए तो जीवन आसान हो जाता है।

कमाने निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। फुर्सत मिला तो बच्चे कमाने निकल गए। वह हरे जिंदगी।

बाकी में बच्चे मन के सच्चे, इनसे कोई इतना निर्मल होता है बच्चे। अगर हम उनका सिद्धांत भी अपना जीवन में प्रयोग करें तो कितना अच्छा होगा, आप ही सोचो। पर हमारा क्या होता है, हम जस जस उम्र बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा दिमाग में ना जा

0: ओल्ड इज गोल्ड, ये पुराना खजाना आपके लिए लाई गई है कि चंदा मामा दूर से
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07 3652.

पहले और आज से ज्यादा हमको जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, उसका हम के इंतजार करेंगे। पर ये सुंदर सा गीत आपके लिए

वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, जीवन के आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर को ठीक कराने में लगाया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे से शरीर को ठीक कराने में लगाया, ना शरीर बचा ना पैसा, वाह रे जिंदगी। जो पैसा हम कमाते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, पैसा कमाना चाहिए पर उसे अच्छा

वक्त दे, अपना परिवार को भी वक्त दे। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा ओढ़ो पहनो, घूमो फिरो उसके साथ। ना सिर्फ पैसा कमाओ कमाओ कमाओ कि ताकि बाद में वही पैसा आपके शरीर बचाने में लग जाए। तो रोना सिर्फ रोना ही पड़ेगा, और समय जो निकल जाएगा तो समय वापस नहीं चला आएगा, वापस नहीं आएगा समय। अगर हम सोचे जो हम बच्चे थे और अब कहाँ हैं, तो वो समय तो चला गया, हम सिर्फ याद कर सकते हैं। हम अक्सर लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं तो सुनते हैं कि वो सब अपना बचपन, अपना माँ बाप के साथ जो वक्त गुजारे हैं, माँ बाप के साथ जो अच्छा किए हैं, जो बनवास किए हैं, वो सब याद करके वो कभी पछताते हैं, कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, साथ में बैठ के वो कहते हैं मैं ऐसे किया था, मेरे माता पिता ऐसा था। बचपन में सभी बच्चे शरारती रहते हैं, तो वो पल जल चला जाता है मेरे प्यारे। बचपन तो इस जन्म में नहीं आ पाएगा, हम चाहोगे चाहते हुए भी हम वापस नहीं ला पाएंगे। बचपन गया, जवानी गया।

है आसमान, आप जैसे हमें रखेगा वैसे हम तो रह लेंगे। कोमल और कठोर, कोमल और कठोर, कोमल यानी कि हिल सख्त, सख्त कोमल इज सख्त एंड कठोर इज हार्ड। कोमल और कठोर तो हम अपना जीवन के ताके अपने शरीर में ताके जीव जो है, जीवा जो है, हमारा जुबान जो है, तुम जो है, वो जन्म से होती है। जीव जो है, जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है। इस पर हम गौर नहीं की थी, पर मुझे अच्छा लगा तो सोचती हूँ यहाँ आपके साथ ये हम आपके साथ बांट ले कि जीभा जो है, जीव जो हमारे हैं, वो जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल है, वो सख्त है, वो कोमल होती है। और डांट जो है, डांट तांद जो है, वो जन्म के बाद होती है और मृत्यु से पहले वो चला जाता है। हाँ, मृत्यु से, मृत्यु के पहले वो हाँ गिर जाता है, क्योंकि वो कठोर होता है, वो तिसहार। तो इसका मतलब ये है कि हमको जीवन में भी कोमल बनना रहे, कोमल ऐसा हमको ये जीवन बिताना है, कठोर नहीं। क्योंकि कठोर आप तो सुने हैं कि हमारे जुबान में, हमारे जुबान जो है कोमल, वो हमारे साथ चले जाते हैं, और ये दांत जो है, जो बाद में आते हैं, जन्म के बाद आते हैं, वो जन्म से पहले चले जाता है। तो कोमल, कोमलता आपके साथ चले जाएगा, कोमल आपके साथ जाएगा।

महेंद्र कपूर जी ने फरमा दी कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो सफर कितना हसीन होगा, आप ही सोचो। इकरार करते करते इजहार कर बैठी हूँ,

0: क्या है?
1: हमारे प्यार की निशानी।
0: तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो।
1: हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। वी बोथ लव ईच अदर।
0: देखो दिशा, दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज।

कभी लोग नाराज होकर सफर पर निकल जाते हैं, कभी कभी लोग नाराज होकर सफर पर निकल जाते हैं, सोचते हैं लौट कर बात कर लूंगे, सोचते हैं कि लौट कर हम आएंगे तो बात कर लेंगे, मगर मेरे प्यारे सुनने वालों, जिंदगी हर बार लौटने का वक्त नहीं देता। इसका मतलब नाराजगी से कोई से दूर ना होए, बल्कि नाराज हो, नाराज तो हो जाते हैं कभी कभी, पर मुंह मोड़ कर जाना गलत बात है। जरूर उसे सुलझा ले, उलझन जो है उसे सुलझाए के और आगे निकले, ताकि ये जो कहते हैं कि जिंदगी हर बार लौटने का वक्त नहीं देता, ऐसा ना करे कि आप जो रह जा बाकी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। काश, तो ये काश को छोड़ो, नफरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे जरूर से सुलझा लेना। ताकि बात में पछताना ना पड़े, बल्कि सुकून रहे दिल में। कि उम्मीद नहीं थी उसकी, उम्मीद नहीं थी उसकी जो हकीकत में हुआ है, उम्मीद नहीं था फिर भी हकीकत में हो गया है।

सुमन कल्याणपुर और रफी जी की आवाज पे नाना करते प्यार बस तुम्हें से कर बैठे। अक्सर यही सा होता है कि नाना करते करते बस कब वो नाना हाँ हाँ में हो जाता है। बस पता नहीं या बरसों बाद जो हम बैठे तो सोचते हैं ना, हम तो नहीं चाहते थे फिर भी मान गए, चलो अच्छा हुआ। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।

0: voordeliger uit zijn met je energie?
1: Abhi tak jo mile dost wo bewafa mile. Haan wo to ho jata hai kyunki hame pata nahi hai kiske dil mein kya hai. अगर हम पहले से पता हो जाए ना कि किसके दिल में क्या है, कितना प्यार है और कितना नहीं, तो हम अपना हाथ दोस्ती की ओर जरूर से बढ़ाते,

किस्मत से बनते हैं, दिल के रिश्ते जो है ना वो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हमारा हजारों से होता है। जरा आप इस पर गौर करें कि दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों

0: खिलते हैं, प्यार के फूल हर मौसम में खिलते हैं, प्यार का बादल हर मौसम में बरसता है, प्यार का बादल हर मौसम में बरसता है, हम मिले या ना मिले पर याद हम आपको हर लम्हे करते हैं।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: अगर मगर और काश में हूँ, अगर मगर और काश में हूँ, फिलहाल मैं अपने ही

ये दो लाइन आप जरूर से सुने और इसे जरूर से समझे कि आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है ना, आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। तो मेरे साथ होगा तो क्या होगा, तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, तू मेरे साथ होगा तो क्या होगा, और तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, मेरी यही एक तमन्ना और तेरी यही एक बहाना। आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्यार सुनने वालों, और वो है कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर, हाँ कैलेंडर, जिसमें हम तारीख देख सकते हैं, दिन देख सकते हैं, महीना देख सकते हैं, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा तारीख है, कौन सा दिन है। उसी कैलेंडर के बारे में यहाँ से आपको दो तीन बात बताना चाहती हूँ। पहला ये है कि लखनऊ

बेचैन मुझे फिर मेरा हाल न पूछो। करके बेचैन मुझे फिर मेरा हाल न पूछो, उसने नजरें फेर ली, मैंने भी सवाल ना पूछा।

जरूर से जरूर से। अदनान साहनी ने कहा कि आप जहाँ भी रहो जरूर से फाहुन को याद रखना, मेरी को भी याद रखना। वेरी रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए।

मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं।

तनाव, तनाव आपके लिए और दिमाग को कमजोर कर देता है। गुस्सा, गुस्सा आपके लीवर को, आपके लीवर को कमजोर कर देता है। डर, डर, डर आपकी किडनी यानी कि आपके नीर को कमजोर कर देता है। दुख, दुख आपके फेफड़ों यानी कि लंगों को कमजोर कर देता है।

zorgen maken effecten van verdriet op de organen. Effecten van verdriet op de organen. Zorgen maken verzwakt je maag. Stress verzwakt je hart en geest. Angst verzwakt je nieren. Verdriet verzwakt je longen. प्यारे सुनने वालों, तनाव में, चिंता में, डर में, दुख में, गुस्सा में मत जियो, वो आप ही के हानि करते हैं, दूसरों को नहीं। जैसे कि आप तेल ही, जैसे हम कहते हैं ना तेल ही आप अगर जलाना चाहते हो तो आप अपने उंगली से तो जला नहीं सकते, उसे आपको माचिस यानी कि लूसीफर या खास आंस्टेकर या कोई भी जिसमें आग होता है पहले उसको जलाना पड़ता है, तब फिर जाकर आप कहीं कैंडल जला सकते हो या गैस जला सकते हो। पहले आप गुस्सा करोगे तो आपके अपना हानिकारक होगा, दूसरों का कब होगा ये तो आपको पता नहीं है, पर पहले आप ही को होगा। तो कहती हूँ गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, डर मत। जीवन ये बहुत अच्छा है, हसीन है, इसे जरूर से हंस कर गुजारो।

कितनी अच्छा बात है ना कि जरूरी नहीं कि तुम भी चाहो मुझे। मेरा इश्क है एक तरफा ही हो सकता है।

0: कनी चमेली अग्निपथ फिल्म का नाम श्रिया घोषाल जी की आवाज में। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये समय ये पल आपको बहुत सारे बधाइयां है।
1: चलाओ ना नैनों से बाढ़े

तीस मार खान फिल्म का नाम, और इससे पहले चलाओ ना नैनो से पान वो गीत निकाल दिया गया था आपके लिए फिल्म बोल बच्चन से। और यहाँ से ये भी सुनर गीत आपके लिए, शैला की जवानी, तीस मार खान।

कफान हिंदुस्तानी रेडियो है मेरे दोस्तों। कहते हैं ये चांद क्या रोशन करेगा आसमान को, ये चांद क्या रोशन करेगा आसमान को, तुम सजा लो माथे पे बिंदी, ये सारा जहां जगमगा जाएगा। इस बारे दबंग दबंग

0: मुन्नी बदनाम हो गए डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग आपके लिए, कि मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, फिल्म का नाम। हाँ आपने तो ये जरूर से सुने हैं, हमने गीत से पहले, गीत के पहले बता दी थी। हाँ आप तो बताओ। हाँ वही दबंग, दबंग फिल्म का नाम है।
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा।
0: एकदम मजे मजेदार गीत आपके लिए, आपके लिए, आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन के जरिए से। एंजॉय एंजॉय।
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह।
2: थोड़ी
3: देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

बस देश चले क्यों नहीं जाएगी, जरूर से करना चाहिए जो आपके दिल में चाहत है। और वो चाहत मैं कहती हूँ, जी हाँ कहती हूँ, अच्छा होना चाहिए, वो चाहत अच्छा होना चाहिए जो खुद को आनंद दे और औरों को आनंद पहुँचाए।

शंकर महादेवन और अनिशा चिनाल की आवाज में ये गीत आपने सुने। देखकर भी नजर अंदाज कर जाना, देखकर भी नजर अंदाज कर जाना, नफरत बता रही है मोहब्बत सच्ची थी।

0: हाँ आपने सुने कि चाल बजा देती है, चाल बता देती है।
1: न्यू DAB+ रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले DAB+ रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

शुक्विंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म का नाम आप जरूर जानना चाहते हैं और मैं जरूर बताऊंगी। फिल्म का नाम बिल्लू। जी हाँ मेरे सुनने वालों, आपने ठीक सुना, बिल्लू नाम है फिल्म का। हाल चाल नहीं पूछते, हाल चाल नहीं पूछते, लेकिन खबर रखते हो, लेकिन खबर रखते हो, सुना है आप मुझ पर, सुना है आप मुझ पर नजर रखते हो।

भी आप सुनिए, ये भी आपके लिए चुनकर खोज कर लाई हूँ कि नजर से नजर मिला, नजर से नजर मिला कर तुम नजर लगा गए, नजर से नजर मिला, नजर से नजर मिला कर तुम नजर लगा गए। क्या बात है, क्या बात है, ये कैसी लगी नजर की हम, ये कैसी लगी नजर की हम हर नजर में आ गए। लिखने वाले की भी क्या तारीफ करें हम।

आने कहो तो अभी जान दे दूं। आनंद राज आनंद जी के आवाज में साथ दे रही थी ऋचा शर्मा। और फिल्म का नाम, हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, हम क्या कहे आपसे, क्या ना कहे, पर ये जरूर कहूँगा फिल्म का नाम आप ही बैठकर और इंतजार में है। तो फिल्म का नाम हम बता दें यहाँ लगे हाथ, धन धना धन गोल। धन धना धन गोल फिल्म का नाम है मेरे दोस्तों। मेरी हर नजर में बसी है तू ए मेरे दोस्त, मेरी हर नजर में बसी है तू, मेरी हर कलम पे लिखनी है तू, मेरी हर कलम पे लिखनी है तू। तुझे सोच लूं तो गजल मेरी, तुझे सोच लूं तो गजल मेरी, ना लिख सकूं वो ख्याल है तू, जो ना लिख सकूं वो

भी, क्या आप भी उनका चमक छल्लू बनना चाहते हो? You gonna be my चमक छल्लू फिल्म रा ऑन से निकाल दिया गया है और गाना का गाने वाला है अकोन। हाँ अकोन यो इस गीत को गाया है। सुना है तुम ले लेते हो हर बात का बदला, सुना है कि तुम ले लेते हो हर बात का बदला, आजमाएंगे कभी तुम्हारे लबों को चूम कर। आप अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखा करो, अपना ख्याल रखा करो। मेरी जान हो तुम, मेरी जान हो तुम, ओ मेरी जान को कुछ ना होना चाहिए, मेरी जान को कुछ ना होना चाहिए।

इश्क फिर कहाँ हिसाब रखता है कि इश्क कहाँ हिसाब रखता है, इश्क जब बेमिसाल हो जाए, इश्क जब बेमिसाल हो जाए तो वो कहाँ हिसाब रखता है। आप भी ना मेरी हर रात का, मेरी हर रात का आखिरी ख्याल हो तुम। क्या बात है, क्या बात है कि मेरी हर रात का आखिरी

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

ही देंगे। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक जोंग रोमांटिक जोंग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नई घर तक और बलमा नहीं खत नई घर तक का आशा भोसले, आशा भोसले का जोंग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: Everything, every great, और दोस्तों song, lovely song, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

और हमारे यारो गुलाबी आंखें जो है ये मॉरीशस के लोग की इस तरह से गाते हैं। तो हम आज आप लोग को सुनाते हैं, हम चलते हैं उमेश महावीर की ओर और वो भी कुछ सुनाएंगे और तितल है मितवा।

मोहाबीर का ये सॉन्ग। उसके बाद हम चलते हैं कुछ लोकल सॉन्ग हम आपको भी सुनाएंगे हमारे सुनने वालों, और ये लोकल सॉन्ग हम मॉरिशस के आप लोग को हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं संजीव बुलाओ तोर हमार लंबूर।

0: चोर की न चाहिए हमारे यारो। तो दोस्तों जैसे बताए गए हैं हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है कैनच सालिक की ओर हम चलते हैं। एगो चटनी सोका लेकर ये आते हैं।
1: You're telling me what? I need to stop drinking and lime and I can't.
0: और बोले stop drinking और क्या क्या भैया हमें गीत की जरूरी है।

और तुके देख ली हम तो बोले हम बहुत खुशी होई गई ली। तो ये सब भोजपुरी सॉन्ग हम आप लोग को रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनाते हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम और एक लेकर चलती है, ये कामना के कोनो गीत है भैया, आओ मिलकर सुना जाए।

वो सिर्फ रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनते दोस्तों, हम अगला गीत की ओर चलते हैं। वो भी एक भोजपुरी सॉन्ग है मॉरिशियस का।

ए भरमावे हे हमार यारो, तो ये गीत आपको हमने सुनाया है तो उसके बालमा की यानी पारो की कोनो बालमा भरमावे हे। तो अब हम चलते हैं अगला ओ बालमा की ओरे।

अपने बलमान से मांगे हैं तो बलमान बोले हम जब ना लावे तो दूसरे दुल्हनिया ले आवे, तो औरतिया बोले नहीं बलमान हम ही के तू ले ले। तो ये सब गीत आपको सुनने को मिलता है भोजपुरी जोन से। दोस्तों एक और हम आपको सुनाते हैं।

का हैप्पी स्टेशन फा हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आंख पर और आंख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं, तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूंगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

होठों में ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल। आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन 5 राजन के साथ। अब की बार होठों से छूलो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठ पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्थ का क्लूप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

प्यार में, तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना।

जब दो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते है, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते है। दोस्तों आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आंसू रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुनने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है। हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

न करो तो आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

ले ले मजा मत भरे राग से, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा। ऐ दिल तू न डर इस जहान से, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

0: जहान से, है दिल तू नजर इस जहान से।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

0: और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232947। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Ik mashup hum pesh karte hain aap sabhi ke waaste. Chaliye milkar sunte hain.

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेसा शिवपॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: Agentele chut. You sitting? A hari morges.
1: अभी आप सुन रहे थे मलेसा शिपाहू की आवाज में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा.

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

నమస్తశ్శే నమస్తశ్శే నమస్తశ్శే నమో నమః హరి ఓం. ఏకదమ్ భయ్యా బీర్బల్ కే స్టైల్ మే కైసే రహే హో ఆప్ లోగ్ సాథియో. पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरवा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल. मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णदत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं. बुधवार का रात्रि का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग मेत गीत और गजल ओट इज गोल्ड ये यशो मिल लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा. तो जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे. अब हमारी फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है. मैं ढील फील लयस्तर प्लेसीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज़ इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो. जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में Maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers. Kantoor 070-365-2247. Studio Katarga nummer 070-362-2077. Quality grant your service gezaad. Fahun Industrial Radio Kamaplo Kelie. B. Chinese Kenneklinte Zarme Rete Jaro. En niet te vergeten, hè, onze kwaliteit is altijd uw garantie. En natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Fahun Hindustani Radio, toch? हमसे पहले आप सोचता हूँ एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुना जो खास करके हम लोगों का सबसे प्यारी बहना श्री विजयंती जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की. जिस तौर तरीके से विजयंती जी ने सदियों से आप श्रोताओं को सेवा करती आ रही है यह आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा. आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद विजयंती बहन जी हमारे फूल टीम की तरफ से और आपको भी एक शुभ रात्रि. अगर आपके घर पे शायद हो सकता है एक खुशी का दिन जश्न मनाया जा रहा है और यह भी हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं. हो सकता है कि आप विवाह संस्कार के तैयारियां में भी लगे हो. जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं हमारे फाउन हिंदुस्तानी के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाई.

बधाइयाँ बधाइयाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है अपरम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर ये विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। हरिओम। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शयन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फील्स डायरेक्टर मैथ्यू स्वीटी वाटसी। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। अनित फरखीत हैं साथियों, जिंदगी का मजे रोजाना लेते रहना, हो सके तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोग के बारे में जरूर बातें शांति करते रहना। फनहार्त बीत खापर कामयाब हो तो हमारी फुल टीम की तरफ से आपको तह दिल से बधाइयाँ ही बधाइयाँ। फॉर खास दौर बंधु, और हो सकता है कि आप कल या आज और परसों कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु। मोरख स्वेर अंदाख है, दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ ट्रॉव और थोड़ा जोर तोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, विनती पाठ सब भी साथ ही साथ करते रहना, तो हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है कि कामयाबी भी आपके कदमों को जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आकर चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी साथियों, रथेबो तो Thuis, op school, op ons werk, ook vooral zo'n beetje geleerd, hè. Never give up, Brananga Sisa. Soso lobby lobby and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dit is mijn privésweet, maar de voelteam betreft zich zo'n zwagen. Dan fijne vakantie, blijf luisteren naar Van in de Stani Radio. Je gaat het zeker leuk vinden, en dat meen ik ook. अब हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको भी फुल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा, फैन फकंसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को ओपन फकंसी एड्रेस इंटरनेट के लेयर द्वारा, ओपन लैपटॉप टैबलेट ऑफ स्मार्टफोन, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बेंट यू एंड ब्लाइफ टू फन अलस ऑफ द होस्ट फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन, एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाग शहर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू। साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षिका और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। From the movie Lalkar 1972, composed by the brothers Kalyan Ji Anand Ji, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह, the king of melody, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो हमेशा की तरह आप सभी से कहते रहते और सरा कहते रहेंगे कि हैव टू नाश्ता तैदलीफ बंधु, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है ना, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम कुछ पुराने नगमे जो मैं सिलेक्ट किया हूँ ढेर फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स के धुने। उसके बाद फ्रॉम नीख तोत हालफ एलफ खात लिस्टर जिन मूवीज में महान अभिनेता रही मैन द हेट मैन फ्रॉम ऑन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द वन एंड ओनली धर्मेंद्र जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान के बात है, शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे यानी 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, और यही हमेशा मैं कहते रहूँगा आप सभी से कि हंसते रहो, हंसाते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, जियो और जीने दो साथियों। रफी साहब।

Alo muskur, alo mehfile sajalo, Rafi sahab ji ke majhoor awaaz mein hamesha ki tarah program ka shuruaat. Paun Hindustan Radio pe aap chun hai saathiyo, 13 minute guzar chuka hai 8 bajkar. To aaj ka is haseen raatri ka shuruaat main karta hoon ek bahut hi purana movie se nikala hua ye ati sundar bayan. Aid film hamari aaj aayegi. अब जरा दिल को थाम लीजिए, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे साथ देरी है भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, सोचता हूँ ये क्या क्या मैंने.

सुन रहे थे एड फिल्म हमारी याद आई गिनी थी इन इंसेस्ट, केदार शर्मा का बनाया हुआ अति सुंदर धुन, सोंगडोर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और माइती मुकेश। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं साथियों, एक बार फिर आप सभी की खिदमत में अनमोल डुएट ओख सोंगडोर, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइती मुकेश, और इस बार साथ दे रही है पुराने जमाने की मशहूर गाने वाली द ग्रेट मुबारक बेगम फ्रॉम द सेम मूवी हमारी याद आएगी, केदार शर्मा जी के बनाया हुआ ये अति सुंदर धुन। मिलकर सुनते हैं फरिश्तों की नगरी में।

The Man with the Golden Voice, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का The Great तलत जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना एक फिल्म मीनार 1954। एक मिनट रह गया है 8:30 बजने में और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में हमारे महान फनकार द ग्रेट दादा हेमंत कुमार के आवाज में आप सुनेंगे अति सुंदर बयान Gecomponeerd door one of my favorite music director from the Bollywood film industry, Mr. M&M, the great Madan Mohanji. Uit de film Moher 1959, Alfazi hai Rajinder Krishanji ka, Milke sunte hai Dada Hemant Kumar ke, Awaaz mein aur unhi ke yaad mein, beautiful song kho gaya jaane kahan.

सुंदरबयान आप श्रोताओं ने सुना। और ये भी महान फनकार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का फीतरान, जिसे हम दादा हेमंत कुमार के नाम से जानते थे, और उन्हीं की याद में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आई डू फिल्म मोहर 1959 गकॉम्पोनियर डोर माएस्ट्रो मदन मोहन, और अल्फा से था महान लेखक द ग्रेट राजेंद्र कृष्ण जी का। तो साथियों, वक्त हो गया कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी तकलीफ के बारे में थी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोमी लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था चीनीज फिलोसोफ श्री कॉन्फ्यूशियस। लीफ्ड फ्रॉम 479 टू 551 फॉर क्रिस्टस। तो ये महान विद्वान महान ज्ञानी ने कुछ बातें लिखे हैं जिंदगी के बारे में। अर्ज किया है श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने कि हिलास एक सखम खस्ताख फॉर अवधान, maar ik zag hem nooit zijn vooruitgang remmen. Over het doel heen schieten is niet zo erg als het doel niet bereiken. Mij bedroeft het niet dat de mensen mij niet kennen, het bedroeft mij alleen dat ik de mensen niet ken. Kennis van de strekking en de kracht van de woorden is de eerste voorwaarde voor de kennis van mensen. Wie zijn plicht ziet en hem niet vervult, is een lafaard. Wie werkelijk goedgezind is, kan nooit ongelukkig zijn. Wie werkelijk wijs is, kan nooit in de war worden gebracht. Wie werkelijk dapper is, heeft nooit angst. Er is niemand die niet eet en niet drinkt, maar weinigen zijn zij die werkelijk weten wat smaak is. De voorname geeft altijd 100%. Wie de kracht van de woorden niet kent, kan de mens niet kennen. Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen. Zonder grootmoedigheid en uiterlijke droefheid, zonder diep gevoelde smart, dat zijn dingen die ik niet kan aanzien. De laatste van vanavond: gij kent het leven niet en wilt van de dood iets weten? तभी कुछ ज्ञान के बातें आप सुना जो जिंदगी के बारे में जाता है। यही अशोमी लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। 7 मिनट गुजर चुका है 8:30 बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग हमारे देन हाग शहर से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो से। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए। लोगों का कहना है कि ये रफी साहब जी का आखिरी सॉन्ग था जो वो महान संगीतकार द ग्रेट नौशाद अली जी के साथ बनाया था। जबरदस्त सॉन्ग है, जरा संभालिए अपने आप को। जिस रात के ख्वाब आए, वन ऑफ माय फेवरेट रफी साहब जी का ये अति सुंदर गजल मिलके सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय
साथियों के नाम।

A masterpiece of composing, Itni Mithi Dhun, बनाया द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी ने खास करके अपने बहन लता जी के लिए. क्या बात है, यमरत सोन मोय फिल्म नीत आइट इस ब्रख्त का करे ना. 12 मिनट बाकी है साथियों, 9 बजने में. और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में संगीतकारों और संगीत प्रेमियों का बादशाह और सहिंशा हसीनों का पुजारी द ग्रेट किशोर दा जी. एक फिल्म प्रियतमा कंपोनेट और माएस्ट्रो राजेश रोशन और लिखा है थी चंद्रमयान को द ग्रेट योगेश जी ने. कोई रोको ना, ऑप्शन किशोर दास.

Qui hasin रात्रि के प्रोग्राम में जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है, हसीनों का पुजारी किशोर दा के ब्यूटीफुल आवाज में एक फिल्म प्रियतमा योगेश का बनाया हुआ लिखा हुआ है अति सुंदर धुन कॉम्पोनेड और रजेश रोशन जी। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 20 मई 2026 का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। मौसम तो जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो बहुत ही हसीन था, तापमान तकरीबन 15 और 16 के दरमियान था। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। तो पहला अध्याय जो हमेशा संगीतकारों का दास्तान नाम कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है, एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, उसके बाद विज्ञापन। जान ओ दिल दोनों है हाजिर, क्या बात है क्या अल्फाजे है। एक दो फिल्म क्या बात है, लॉफ एंड मर्डर, महान संगीतकार ओपी नायर का कंपोज किया हुआ है, अति सुंदर बयान द ग्रेट ग्रेट ग्रेट आशा भोसले जी के आवाज में। Enjoy the music.

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के शो में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 2 मिनट गुजर चुका है 9:00। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एरोटिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशल विलोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ट फॉर हेट लुइस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से नाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टेनिस कंतोर यूर फन मांडा तो फ्रेडा ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07-35-62-22-47 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-32-67-77। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। यू बेंट फन हार्ट वेलकम। बेंट यू नो खेन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। रिसेंट है वो ओ कौन से एक karaoke team van Fahun Hindustani Radio, waar heel veel omroepers live voor u binnenkort gaan zingen. Volg onze social media's en onze omroepers, dan hoort u of ziet u heel binnenkort waar we live voor u gaan zingen, hè? Dan bent u van, natuurlijk van zeker van harte welkom. तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और रो को भी बनाए। भी जानकारी इसके बारे में आप तैयार करें अपने 07-35-62-47 एंड फ्राग नाउ उनसे टीम लीडर फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द वन एंड ओनली माएस्ट्रो जॉनी नंबर वन। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद, और हो सके तो थोड़ा धन ढोड़ा भी पीट देना हम लोगों के बारे में। लव यू। वादा के मुताबिक बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ। और देखा जाए तो बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म सीता और गीता तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं। तो कुछ नगमे बीते हुए हफ्ते में सीता गीता फिल्म का मैं सुना चुका था, कुछ रह गया है सुनाने को। मैस्ट्रो आर डी बर्मन का साज और आनंद बख्शी के अल्फाजे आप सुनिए। अति सुंदर बयान पद्म भूषण दादा मन दे जी के ब्यूटीफुल आवाज में, और खास करके हमारे जाम के चाहने वालों के लिए। अभी तो हाथ में क्या है, आगे सुनिए।
1: अभी तो हाथ में जाम है।

Beautiful song, wonderful song, leta dike beautiful awas me watam promotsi van alcohol bar dritne queen of melody leta dike beautiful awas me ati sundar bayan aap srotaon ne suna aur ye saath hi saath aakhri song tha ai the film Sita aur Gita. साथियों अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1977 में और दिख जाए फिल्म समाधि इज द फिल्म नेम और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट अश्य पारेख जी के साथ ब्यूटी क्वीन जया बहादुरी जी भी इस फिल्म में काम किया है संगीतकार एक बार फिर आर डी बर्मन जी के साथ और सभी गाने लिखे है द ग्रेट मजरू सुल्तान पुरी जी ने फिल्म समाधि से अति सुंदर बयान जो मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आर डी बर्मन के साथ पर के कांटा लगा बंगले के पीछे क्या बात है ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

by maestro Ardy Burman from the movie Samadhi 1972. Queen of Melody Lata Mangeshkar ji ke beautiful awaaz mein. 21 minute guzar chuka hai nau bajkar saathiyo. Agar aap chun hai aap hi ka man chaha radio station par Found Hindustani Radio Den Haag Sher ka aur program chal raha hai Geet aur Ghazal Old is Gold Nagme from the movies jinme mahan abhineta the great actor Dharmendra ji ne kaam kiya hai ये फिल्म समाधि आप सुनिए ये अति सुंदर बयान दिल को छू लेने वाला नगमा सुनने को जा रहे हैं आप सभी को द ग्रेट ग्रेट ग्रेट आशा भोसले जी की याद में

सुंदर जबरदस्त सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना, जब तक रहे तन में जिया, डगड़े आशा जी के ब्यूटीफुल आवाज में, एक कंपोनेट और आडी बर्मन फ्रॉम द मूवी समाधि, निहरिंग टू ए सेफ एंड अल्फाज था मजरू जी का। 4 मिनट रह गया है 9:30 बजने में साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जाने जाना जाओ कल फिर आना, क्या राइम है मोयर राइमिंग मम फिर खुद खरेम सुनाने को जा रहे हैं ये अति सुंदर बयान आप सभी को, और इस बार हसीनों का पुजारी और संगीतकार का बादशाह और सहिंशा डवाने डोली किशोर दा ऑफ सेंट बेस्ट।

दो मिनट व्यतीत हो चुका है साथियों, 9:30 बजकर और आप चुन है फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए। हमारे खास करके शेर के चाहने वालों के लिए कुछ नए नए लिख कर भेजा है भाई भूपेंद्र जी यारो का यार मेरा डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई से थी। उम्मीद हमेशा अपने दिल में जगाए रखना, उनके आने के इंतजार में पलके भी बिछाए रखना। वो नहीं तो कोई दूसरी आएगी, वो नहीं तो कोई दूसरी आएगी, बस तुम प्यार के दीप जलाए रखना। क्या बात है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, रिमेंबर दैट ब्रो। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ये भी रिमेंबर करना। पानी के बूंद कहीं टिकती नहीं, पानी के बूंद कहीं टिकती नहीं, और ईमानदारी मुझे कहीं दिखती नहीं। खरीदारों के मंडी में खड़ा है, खरीदारों के मंडी में खड़ा है, कशिश जितनी मर्जी बोली लगा ले। कुछ चीजें है यारो, कुछ चीजें है जो बिकती

ना रहे हो तुम वही, ना मैं वो रहा हूं ना रहे हो तुम वही, बातें और ही है जो बेकार अब बची, बातें हैं ही है तो बेकार अब बची, तुझको भुला दिया दिल से मिटा दिया, तेरा ना लूंगा अब नाम मैंने ना वो रहा जो कभी मैं था, भूल गया तेरा पता तुझसे जुदा होके हम जुदा, भूल गया मैं ना वो रहा हूं ना रहे हो तुम वही। आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने को। अगला बयान फ्रॉम द मूवी समाधि, और इस बार एक अति सुंदर द्वैत आप सुनेंगे, किशोर दा और लता जी के ब्यूटीफुल आवाजों में, कंपोनेर दोर मास्टर आदि बर्मन, स्क्रीफ दोर मजरू सुल्तानपुरी। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम, एंड प्लीज एंजॉय द म्यूजिक। क्या नगमा है, क्या धुन है, और जिस खूबी से ये दोनों ने गाए हैं ये नगमा को, मखौक गसेख्त वर्दे एंड गप्रीस वर्दे। मैंने देखा एक सपना, क्या देखा, आगे सुनिए।

महान गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सुरेखा देवी द ग्रेट लता जी और संगीतकारों का बादशाह और सहिंता हसीनों का पुजारी द ग्रेट किशोरदा एक फिल्म समाधि निकटिंग टू इन सीखते कंपोज बाय मास्टरो आर डी बर्मन आखिरी बयान आप सुनेंगे जो फिल्म समाधि कुछ लंबा चौड़ा नगमा है दो भागों में और सुनाने को जा रहे हैं शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान डवाने डोंडी पद्म भूषण मन्ना दे जी कि ये खेल है तकदीर के जरा अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना कंपोज बाय राहुल देव बर्मन और अल्फाजे है मजरू जी का

सुंदर बयान शिक्षा और सबक से भरा हुआ ये खेल है तकदीर के। ग्रेट सिंगर पद्म भूषण मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। जो फिल्म समाधि कॉम्पोनेट और राहुल देव बर्मन जी और शरीफ डोर मजरू सुल्तानपुरी। 10 मिनट रह गया है 10:07 और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे देहाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 आवर्स एट योर सर्विस में गुदू। अगला बयान सभी फिल्म जो आप अभी तक नगमे सुने हैं और इन फिल्मों में द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं, तो सभी नगमे फिल्म समाधि का आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1927 तक में, फिल्म राजा रानी। और इस एक बार फिर इस फिल्म में काम किया है द ग्रेट धर्मेंद्र जी मलकाए हुस्न हेमा मालिनी जी के साथ, दिलातर ऑक्शन फ्रोवर्ट और साथ ही साथ प्रेमनाथ भी काम किया है इस फिल्म में, द ग्रेट प्रेम चोपड़ा भी, एनाटेलिक कॉमेडियन जॉनी वॉल्कर जी ने भी इस फिल्म में साथ दिया है। महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है और सभी गाने लिखा है द ग्रेट आनंद बख्शी जी ने। तो फिल्म राजा रानी का ये अति सुंदर सॉन्ग आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के आवाज में ये अति सुंदर बयान कि कितना मजा आ रहा है, क्यों नहीं क्यों नहीं।

हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 20 मई 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड अतिलक वेरिक्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशलो बिलो बियॉन्ड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अतिलक बेदंत फॉर हेट लुइस्टरन। तो जो भी रेडियो का काम हो ना, देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी बेल ऑफ नूर 7035622747 कंटोर, ये तो स्टूडियो का तार का नंबर है 07362207। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी, क्वालिटी स्टार्ट ऑलवेज ऑफ द एस्ट प्लांट्स एंड यू बेंट फन हर्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, और रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पेट देना हम लोगों के बारे में। रिमेम्बर, आप लोग है तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग काम चलाते हैं आप सभी के सेवा में। बेंट यू नो खेलेत फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सो सी ऑल द फाकर फन ओंस ऑफ फन ऐप व्हाट एवर सेंट टू कॉन्स एक कराओके संग टीम वार हील फील omroepers, we zijn een tijdje aan het oefenen en we hebben ook her en der een paar keer links rechts al opgetreden. En binnenkort kunt u wat van ons verwachten, hè? Speciaal voor onze luisteraars zijn we leuke dingen aan het voorbereiden. Dus volg onze sociale media's en onze omroepers, dan hoort u zeer zeker binnenkort waar wij voor u live gaan zingen. Dan bent u ook zeker van harte welkom, toch? वादा के मुताबिक घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 6 मिनट व्यतीत हो चुका है 10 बजकर और कुछ गाने रह गया है। सुनाने के फिल्म राजा रानी का जो रिलीज किया गया था 1986 में, तो दूसरा सॉन्ग आप सुनेंगे एक फिल्म राजा रानी। और इस बार द ग्रेट लता जी एक बार फिर आप सभी के सेवा में। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, और क्या होने चाहिए, आगे सुनिए।

Beautiful song, Dunia Kamela Meleme Lerki, from the movie Raja Jani. Het is onderbegaan, composed by Mahan Sangeetkar Juri the Great, Lakshmikant Pyarelal, aur awaz thi Bharat Ratna Queen of Melody, the great, great, great, Lata Mangeshkar ji ka. 12 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर और आप चुन है आपकी का हैप्पी स्टेशन देन हाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्फस मी गुदू. अगला बयान एक मजेदार सॉन्ग है, ए बी सी डी छोड़ो और कुछ और करो ना, यानी प्यार करो. Ik ben vier uit de film Raja Jani 1972, LP Lakshmikant Pyarelal ke saaj par. Ik ben vier, the great, great, great Suroka Devi Lata ji.

ब्यूटीफुल मजेदार सॉन्ग एबीसीडी छोड़ो और कुछ और हम लोग मिलके करें ना, खेले आंख में चोली, ये कह रही थी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, एड फिल्म राजा जानी 1972, कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फा से था आनंद बख्शी जी का। तो साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। और शेर्स है कुछ साकी और शराबी के बारे में। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी, मस्जिद खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, मस्जिद तो खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा, काफिर के दिल में जा, वहां खुदा नहीं। हम लाख अच्छे सही लोग खराब कहते हैं, हम लाख अच्छे सही लोग खराब कहते हैं, बिगड़ा हुआ वो हमको नवाब कहते हैं। हम तो ऐसे बदनाम हो गए हैं कि पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो उतर जाएगी, किसी की आंखों से पियो, किसी की आंखों से पियो, खुदा की कसम उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। तोहफे में गुलाब लेकर मत आना, कबर पे चिराग लेकर मत आना, बहुत प्यासे हैं हम बरसों से ऐ मेरे दोस्त, बहुत प्यासे हैं हम बरसों से ऐ मेरे दोस्त, जब आना तो शराब की बोतल और दो गिलास लेकर आना। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, नशा मोहब्बत का हो या शराब का, नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। तो था कुछ आखिरी शेर हमारे आज के हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान और वो भी एक आखिरी सॉन्ग होगा आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। आजा कुछ कह जा, ये कह रही है लता जी अपने मीठी आवाज से आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं को। और ये भी फिल्म राजा जानी से निकाला हुआ हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आनंद बख्शी के अल्फाज़े। एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ ये आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आखिरी बयान। 8 मिनट रह गया है दोस्तों 11:30 बजने में, अरे 10:30 बजने में, सॉरी।

जा, रह जा और कुछ कह जा और कुछ सुन जा। बहुत ही मीठी और प्यारी सॉन्ग आप सुना, एड फिल्म राजा जानी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का सुपरहिट मूवी 1970। भारत रत्न सूर्य का देवी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सर्वन किए। कंपोज अरेंज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट ग्रेट ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी और अल्फाजे था द ग्रेट पुएट महान लेखक द ग्रेट आनंद बख्शी जी का। साथियों धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है ना आप सभी से विदा लेने को। यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप सभी को सेवा और खिदमत करने में, यही कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने मेरा साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूं सरनामी संगीत लेकर। पहला अध्याय में कुछ गैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और लास्ट ईयर में स्टाल नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारी बात आप श्रोताओं को सेवा करने वाली है कुछ आधे घंटे के प्रोग्राम प्रेजेंटेड और उनसे लिफ्ट द ग्रेट विजयंती जी। विजयंती के बाद विज्ञापन सुनेंगे फन एलफ्यूर और उसके बाद हेरहालिंग फन प्रेजेंटेड न्यूज डोर उनसे टीम लीडर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन। तो मुझे आप सभी इजाजत दीजिए, प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना। फॉर स्ट्रक्स वेल्थरिस्ट सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ट फॉर हेट लाइस्टरन। और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ गुनगुना देता हूँ दर हेमंत कुमार के याद में। इस बार जबरदस्त सॉन्ग है मेरे दिल के करीब।

फ्रॉम द मूवी गाइड से अभी आप सुन रहे थे, लता जी के साथ में किशोर दा आपको मिलकर सुनाने वाले थे गाता रहे मेरा दिल तो ही मेरी मंजिल। मुकेश जी आ रहे हैं प्रोग्राम में ओ मेरे हमराही।

दमाईते मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ओ मेरे हमराहे क्यों तेरा मन घबराए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, आशा भोसले जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मोहम्मद रफी जी और लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के। लता जी और मोहम्मद रफी जी आपको क्या सुनाएंगे, बेहुरी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी।

0: informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: दोस्तों और यहाँ से कुछ मिली जुली पुराने और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वहीं होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्राज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आप के दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम के ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आजाद का ये फिल्म नई खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है हमारे दोस्तों। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है, और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी, और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का ओर, वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं। और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई, और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफर हो मेरी हम सफर, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, नेहा इन फिर का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी। मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता की ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है। पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नहीं कहती सैफ ने सस्ती इस गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथी लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है।
2: जिस पथ पे चला उस पथ पे

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे, मुझे लता जी फिल्म के नाम है, यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और राहुल दुर्बिन के साथ में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत देखते इंद्रिय तख का ये फिल्म है जब हम जवां होगे दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बहार प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर। देखती नीखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं। फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी से ही मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है नेहा तिन होंदत और फिरन शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं। और एक बार दोस्तों और प्रका और ये गाना है ओ राधा तेरी बिना, और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम, गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है। और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए, ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

से अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारी प्यारी प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं कि हैं और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, आई मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना फिल्म के नाम है। नेकति होंद नेक ने शस्तक का लता जी इस गाना को गाया है, इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और माल्हा सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना हम जॉनी वॉलकर दोस्तों, हेलेन काम किया है और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहाँ जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए, इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

0: और वो बड़ी अरमान से, बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तिक का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना तो, और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: माशिनाज मैं

मिले जहां मिल गई दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके और

तुम तो प्यार हो हो सजनी, और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए। फिल्म शहरा का ये फिल्म लिखत इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखत नेखने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिलके सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होने निहन सस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या क्या गाते

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकांत के प्यारे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ में। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहाँ से हम चला देते हैं और यहाँ से मेरे दोस्ती मेरे

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन बर्तन नर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

कर बदल जाने वाली फिल्म महबूब ने हंटिंग टू एंसेस्टर्स नूरजहां इस गाना को गाया है दोस्तों, और ये एक बहुत पुराना गाना है जो आप लोग को हमने सुना दिया है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों मत भूल जाना, रेडियो फाहून पूरा विश्व में आप सुन सकते हैं दोस्तों, और आप जरूर डाउनलोड कीजिए वेब जो है हमारा रेडियो फाहून का, और देहा बी प्लस पे हम पूरा हॉलैंड में सुनाई देता है, और अपने गाड़ी में एतर पे एम 15.66 तक पे हमारा प्रोग्राम आप लोग सुन सकते हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और जितना भी दोस्तों है, परिवार है, दुकानदारों है, बदरईफो है, आप सबको बता देना है कि रिक्लाम यहां पर रेडियो फाहू में बहुत सस्ते में मिल जाते हैं हमारे दोस्त। और दोस्तों प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से माच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूमता है वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों, और हम तुरंत चलते हैं, और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों, और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा, साधना संगम सरगम है इसमें, और फिल्म के नाम है गुत्थे गर्स खुद गर्स दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

और आप किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेह तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण।